एलजीले ल्यायो नयाँ एलजी एसेन्सियल सिरिज, अब किफायती मूल्यमा रेफ्रिजरेटर, वासिङ मसिन, एसी को कम्प्लिट रेन्ज, 10 वर्षको वारेन्टी सहित 0% नो कस्ट इएमआई। नागरिकता भए पुग्छ, हरेक घरको खुसी, घर घरमा एलजी। एलजी, लाइफ गुड।

0: चिकित्सकद्वारा उपचार, चार सूत्र लगायत आधुनिक तथा आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिको सुविधा, दैनिक ओपिडी तथा शल्यक्रिया सेवा,
1: रोग लुकाएर नराखौ, समयमै परीक्षण गरौ।
0: थप जानकारीका लागि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय काठमाडौँ, फोन 01-4110-6690, 4110-6690।
2: स्वस्थ जीवनका लागि आयुर्वेद अपनाऊ।

0: अब रारा चाउचाउ ब्राउन चिकन, ब्राउन भेज र रारा चिज बल्स मा पनि उपलब्ध छ।
1: अनि तयो कागज के मेची वा
2: आ झिल्काई
1: के पर्सनल नम्बर ब्लक लै बदी
2: पर्सनल मोबाइल नम्बर मे उनी यो टेलिकमर बे अफिस तरी आइ र ब्लक लै र खलखाई
1: अनि बैंगरी
2: बैंगरी
1: आ
2: सर चाहिँ तले लल्पर्दी
1: चम्लल्पति न आफै न मोबाइल नम्बर फेर दिया बदेर ब्लक तयाई भिसा आफै न ब्याङ्क दे दिने जानकारी पिन परिम दे आफै न ब्याङ्क खातै न जानकारी अरू न योरी थोनी दक्या सचेत तल परिम
2: सतर्क तना ठगी तब्दक्या जोगिना
3: सिद्धार्थ ब्याङ्कले जनहितरी जारी सन्देश
4: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
5: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज हामी सबैको साझा आवाज।

0: अब रारा चाउचाउ ब्राउन चिकन, ब्राउन भेज र रारा चिज बल्स मा पनि उपलब्ध छ।
1: अनि तयो कागज के मेची वा आ झिल्काई के पर्सनल नम्बर ब्लक लैबदि पर्सनल मोबाइल नम्बर मे उनीयो टेलिकमर बे अफिसर आएर ब्लक लै र खलखाई अनि बैंगरी बैंगरी आ चर्चै तले लगपर्दि सम्नल पति न आफैन मोबाइल नम्बर फेदिया बदेर ब्लक तयाई विषय आफैन ब्याङ्क देवी जानकारी पिन परिम दे आफैन ब्याङ्क खातै न जानकारी अरू न योरी थोनी बेक्या सचेत तल परिम
2: सतर्क तन ठगी तब्द क्या जोगिना
3: सिद्धार्थ ब्याङ्कर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
4: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

0: को एक मात्र डीटीएच सेवा डिस्क होम
1: डिस्क होम खुशी को कनेक्शन
2: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियता को अभ्यास।